नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात

0: समन्वय स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ఆకాశవాణి వివిధ భారతి 102.8 ఎఫ్ఎం ఆకాశవాణి సమయం 3 గంటలు. స్టే ట్యూన్ టు ముంబై వివిధ భారతి. ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन. पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत. कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार. आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है. कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत. कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, आकाश कुमार और शिल्पा रानी, सुखजी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, विशाल, आरुषि, प्रियंका, ख्याति, शक्ति, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई और किशन लाल जी चौहान, रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि और शिवांग त्रिपाठी, मनु विजय मिश्रा, गोविंदा साहू, अमन पीए और गोविंद ओमर और अमरजीत सिंह सांगा, बेनीपट्टी मधु बनी बिहार से अरविंद कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, मनिया कुमारी और गुड़िया कुमारी, करीमनगर तेलंगाना से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय, साई किरण, शेखर श्रीनिवास और पन्ना वेंकटेश, एकलव्य नगर जिला रंगारेड्डी से सुषमा, बाबू अकेला और बिजली. तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में. गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार.

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है उषा खन्ना की और फिल्म का नाम है साजन की सहेली। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक, तेलीपाड़ा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी, अनीता श्रीवास और छन्नूलाल श्रीवास, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ बेमेतारा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी।

साथी वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रज कांत सारथी, महामाया पाड़ा ग्राम दरचौरा से फिरंता साहू और दोरोलीन साहू

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, गराम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नवसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वद देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आप सभी दोस्तों की पसंद पर। पत्र लिखे हैं आपने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदा राज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।
1: मनचाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चोगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या करेंगे? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। लाहौल वाला
2: नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: अल्लाह मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार। ए, मैं मर गई। अल्लाह
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी।
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप बुबु? सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नया बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से
2: सरकार।
1: अब जाती है कि
2: मुझे ना निकालिए सरकार।
1: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरे अच्छे सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
2: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
1: ओहो कैसी बातें कर रही है हलीमा।
2: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, कहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
2: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
2: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब?
2: जी कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रही हूँ।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
2: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
2: उनके हुक्म से तो नया बुबू ने मुझे भेजा है।
1: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
2: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
1: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
2: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बुबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए

0: माँ को बचा लीजिए।
1: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
0: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
1: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
0: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालिएगा। याद नहीं, सिकंदर नवाब ने अपनी निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
1: कौन सिकंदर नवाब? वो पगले चचा?
0: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
1: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
0: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मिराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
1: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
0: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
1: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
0: मगर हूँ आपकी।
1: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
0: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
1: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितने सर्द हो रहे हैं।
0: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
1: हलीमा, हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे। तुम हमारी दुल्हन हो, खुदा और रसूल खुदा की कसम, तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा, हलीमा।
2: हर बात की एक हद होती है नायाब। लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई, जी का आजार हो गई, अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं। ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
3: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम।
2: हाँ बेगम, भला इन आंखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
3: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
2: आ जाएगी, आप देखते जाइए। जी से उतरी कि साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
3: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
1: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
0: मेरा जी चाह रहा है।
1: हमें छोड़कर चली जाओगी?
0: जल्दी आ जाऊंगी।
1: कितनी जल्दी?
0: थोड़े दिनों बाद।
1: कितने होते हैं थोड़े दिन?
0: यही कुछ 6-7 महीने।
1: 6-7 महीने?
0: आहिस्ता बोलो।
1: हम मर जाएंगे हलीमा।
0: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर मेरे नौशा। बुरी फाल मुझसे न निकाली, अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
1: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा? जान, ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
0: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती, सनोबर की और बात थी, बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय, मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
1: बच्चा?
0: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
1: मेरे सर की कसम खा।
0: नहीं अल्लाह, नहीं।
1: हलीमा, तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
0: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
1: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा।
0: जी।
1: बच्चा कब तक होगा?
0: 6 महीने बाद।
1: अगर रोएगा तो हम बाजी को बहुत डांटेंगे।
0: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
1: तुम गांव नहीं जाओगी।
0: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
1: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
0: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
1: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
0: सरकार।
1: शट अप।
4: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
5: ये लीजिए।
4: ये शह वो मारा।
1: भाईजान, मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
5: अम्मा, इस वक्त बड़े जोर की बाजी जमी है, खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
1: भाईजान,
5: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
4: शह हजमत नवाब, शह।
1: उफ, प्लीज भाईजान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
5: उफ, कहो क्या कहना चाहते हो।
1: जरा मैं।
5: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
1: भाईजान,
5: अम्मा कह भी चुको।
1: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
4: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुर्दा?

0: अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
1: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
0: सरवरी जालिम पटाखा है पटाखा, है क्या उठान है। अमा उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
1: अफजल भाई अच्छा जाने दो, आगे चलो, मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा। मियां ये महल का पुराना दस्तूर है, वो गाय भैंस नहीं वो...
0: कहो कहो शर्मा क्यों गए।
1: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है। शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो, ला हौल वला कुव्वत।
0: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता, प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
1: भाई जान,
0: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
1: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी। बहुत खूब, वो कब? मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया। और निकाह? काजी कौन था? खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
0: वल्ला तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
1: जाओ मियां, क्यों वक्त जाया कर रहे हो। हाँ भाई अफजल भाई, दूसरी बाजी जमाए, ला हौल वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
2: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ।
0: चमन मियां, तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
2: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
1: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहां से।
2: भाई जान मैं
1: बदतमीज।
0: अरे, अरे अरे ये क्या करते हो हशमत मियां, क्या करते?
1: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसे हुई।
0: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
3: बेगम साहिबा एक बात कहूं?
4: कह भी चुको क्या कह रही हो।
3: नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है,
4: उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी।
3: अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए। फरागत पाकर विलायत जाने का इरादा है।
4: हाँ हाँ खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
3: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संतु न ले जाएंगी?
4: दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी। खैर से वो मेरे पास ही रहेगा।
3: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी।
4: अय है दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारो पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई।
3: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं, मुंह जले की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं।
4: ए बुआ तो कुछ मुंह से फूटो तो।
3: नजम बिटिया और हलीमा का बस दो चार दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
4: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
3: जो हुक्म सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी, यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
4: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी।
3: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ साहबजादे भी जिद के पूरे हैं, बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
4: कभी सोचती हूँ नायाब तुम न होती तो।
3: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
4: जरी खासदान आगे बढ़ो।
3: लीजिए हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती हैं।
4: अच्छा दिखा लाओ।
3: अभी मतन तुम्हारी बेगम कहाँ है? जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
5: ओहो नायाब बहू, कहिए महल में सब कैसे हैं? अच्छे तो हैं?
3: जी हाँ सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया,
5: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
3: लॉन्ड्री तो आपके पास हाजिर हुई थी।
5: क्या है?
3: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
5: क्यों?
3: रानी बिटिया नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई ऑर्डर जाएगा।
5: मैं क्यों पसंद फरमाऊं?
3: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
5: कौन छोटे सरकार? छम्मन मियां?
3: जी जी हाँ।
5: ओहो हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
3: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजाक, ये देखिए ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे अल्लाह मारा, ये हाँ लाकेट।
5: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छम्मन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीवी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत
3: है? है। रानी बिटिया क्या फरमा रही हैं आप?
5: क्यों, क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
3: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधी है।
5: बच्चा तो छम्मन मियां का है ना।
3: बच्चा? कैसा बच्चा?
5: फरखुंदा खाला कह रही थी कि
3: ए बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांदियां इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती हैं।
5: बोलो बोलो जब्बार की कसम खाकर कह दो।
3: ए बिटिया आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाबजादे हैं मगर वो लौंडे बांदे तो जी का बेलावा होती हैं, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता।
5: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से।
3: और क्या बिटिया रानी,
5: हशमत भाई की तो एक बांदी थी, क्या नाम था? सनोबर।
3: ये वो रानी बिटिया ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए।
5: एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बबू?
3: शौक से पूछिए मगर वो
5: नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम।
3: हाय हाय बिटिया रानी जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रहे हैं?
5: क्यों, अगर छम्मन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो।
3: अम्मा जान नहीं, इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रहे हैं, वो होती तो मजा न थी जो यूं मेरे मुंह पर जुतियां मारती। बेटी जान ये गज भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी?
5: खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं, मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
3: बस बीवी बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
5: आय हाय बुबू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
3: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरे साथ पुष्टों को कहा।
4: ओहो नायाब आई है, चली कहाँ? क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे हैं?
3: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं। खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बंबई से बनकर आएंगे।
4: नायाब बूबू तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है? समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
3: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
4: ऐ है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
3: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चों वाली होकर, तौबा मेरी तौबा। बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
4: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया, जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
3: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती हैं, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती हैं बेगम। नौच यू कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या आज करूं बेगम से जाके?
4: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
6: अम्मा हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक तो मोरी में मुंह देते हो और।
2: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
6: मियाँ तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
2: दूस भाई आप नहीं समझते।
6: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे?
2: हलीमा मर जाए।
6: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे। वल्लाह क्या पटाखा है।
2: कमीने पाजी।
6: छमन होश में आओ, क्या पागल हो गया?
2: हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा, चले जाइए यहाँ से। हलीमा, हलीमा।
7: जी सरकार।
2: कौन सरवरी?
7: जी।
2: तुम यहाँ क्या कर रही है?
7: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है? कुर्ते में लगा दो।
2: चल भाग यहाँ से और हलीमा को भेज।
7: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हमाम में पानी तैयार है।
2: हलीमा कहाँ है?
7: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हमाम में लगा दिया है।
2: ओहो हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
7: अल्लाह हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
2: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी, चल भाग।
7: हम नहीं जाते।
2: कहाँ है हलीमा बता।
7: उई अल्लाह मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
2: बता, नहीं बताएगी?
7: बताती हूँ।
2: बोल।
7: वो उधर शागिर्द पेशे में।
2: क्यों?
7: वो उसका जी अच्छा नहीं है। मियाँ खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
2: फरखुंदा बाजी।
7: अरे छमन मियाँ क्या पैदल भागे चले आ रहे?
2: साइकिल पर। फरखुंदा बाजी वो मर रही है।
7: अरे कौन?
2: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोली भको मत।
7: ठहरो,
2: मर जाएगी, वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
7: नहीं मियाँ तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूँ। बुबू नायक बुबू अस्पताल की लारी आई है।
4: अस्पताल की लारी?

सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया, इतने बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा? क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब।
2: हाँ हाँ।
1: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
2: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ, मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था।
1: जी बिल्कुल।
2: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब। तो ये है, वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया करते थे, जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मैं उसी लिखती थी।
1: अच्छा।
2: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
1: जी
2: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये

0: तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया तो।
1: अच्छा,
0: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं? कहा नहीं, मैं गाऊं? तो बोले गाओगी? कहा, तो मैंने शुरू किया। वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था। हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा, देश है करम, तररम परम परम तररम, ये गाना था। तो मैंने कहा मैं गाऊं? तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया। अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले ए जागीरदार, सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आया इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
1: बिल्कुल।
0: तो मौसिन को पूछा, अब सीखती है? मौसिन ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। इतना भी काफी था।
1: हाँ,
0: उनके लिए इतना कहना ही काफी।
1: बहुत बड़ी बात।
0: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम है।
1: कम है जी,
0: है ना
1: जी, जी।
0: उनके साथ तो ये था मेरा। नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने, कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने। वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया।
1: जी।
0: तो हम गए, और वो भी टेनिस खेलने गए थे।
1: अच्छा।
0: वो दिलीप साहब के साथ खेलते
1: हाँ,
0: थे टेनिस।
1: हाँ,
0: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश हो गया। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, मेरे बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई
1: जी।
0: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और करते करते 10 बज गए
1: रात की,
0: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले, मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइंस हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
1: अरे
0: तो
1: जी।
0: अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार, आईना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ।

0: तो क्या है खराबी, इतना ही था बस
1: जी।
0: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट
1: जी,
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे, तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
1: आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई। तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है, ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी,
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है। और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब

0: मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने? बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
1: जी, जी जी जी जी।
0: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूं, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं, तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
1: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
0: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बुलब पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तू, उस पे बात पे आ गई। पर वही
1: जी,
0: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
1: जी बिल्कुल,
0: वो था बस।
1: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
0: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन
1: जी,
0: मेरे पंचमदा
1: जी।
0: इतनी प्रभावित कि मैं, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ।
1: जी,
0: तो
1: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है, तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
0: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना, मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
1: बॉन्डिंग
0: बहुत
1: थी,
0: बहुत हाँ। बहुत अलग।
1: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए, जिसमें आपने अपनी आवाज
0: दी। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
1: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
0: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है।

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो वो बच्चा अपने
1: पंचमदा ने सिखाया, पता है उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो, शर्मिला जी कैसे बोलती हैं, मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोला यही चाहिए मुझे। हाँ आगे क्या है डैडी, मैं तो भूल ही गया, मुझे वो चाहिए। बहुत यादें आपने ताजा की आज।
0: जी, जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी, कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना, तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है, फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
0: जी,
1: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी।
0: अच्छा
1: जी, मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी
1: कोई भी गाना अच्छा, पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सब

0: सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
1: अरे
0: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा, एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे। दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे।
1: अच्छा।
0: और फिर ओवर टाइम, तो वहीं सोए थे वो, उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचम दा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
1: जी,
0: बहुत ज्यादा
1: जी।
0: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
1: वो गाएगी,
0: हाँ बोले गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी, गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी
1: जी,
0: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल
1: सूट करती है,
0: इस करके ये गाना मुझे मिला।
1: तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं, आपकी पसंद का बताइए, तेरा मुझसे है पहले का नाता,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आप ही का गाया हुआ सुन
0: जी।

0: मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता
1: कोई।
0: कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं लोगों ने, किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए, पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको जन्म।

0: वाला है, उसी को बुलाना तू आ जा।
1: ये जो वो बोलते थे ना मंदा, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही
2: जी जी,
1: देखिए मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ एक खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये रा रा रा, और सॉफ्ट उसी को भुलाना तो आजा आजा।
2: क्या बात है, क्या तो बात है,
1: ये मैंने
2: ये आकार का जी, ये पंचम दाह में ही ये गुण
1: ये थे। उतार चढ़ाव डायनामिक समझे से
2: जी, जी, जी।
1: कहां कितना आपको जोर देना,
2: देना है,
1: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
2: वाह,
1: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
2: वाह।
1: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते
2: जी जी जी। मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला,
1: बहुत,
2: उस छत्र छाया में आपने
1: बिल्कुल
2: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है, जो
1: ये मेरा भाग्य ही
2: नसीब नहीं मिलता है, अच्छे अच्छों को नहीं मिला
1: नहीं
2: है। अभी भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है जिनको हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले सके सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी, उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म, एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ जी
0: बांग्लादेश वॉर के
1: जी
0: ऊपर वो
1: जी
0: था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की
1: बारात,
0: बारात।
1: वाह।
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ, एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: है तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी
0: कोल्हापुरी।
1: ने जी।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहां प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स, मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट, मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा,
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी,
1: ने।
0: कि मैं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर
1: अरे
0: अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या।
1: हाँ
0: नहीं, मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूं और मैं लता जी के साथ गा रही हूं,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात।
0: मेरे लिए काफी है।
1: जी।
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है आप,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज, मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट पुश बैक,
1: जी
0: वो इनके ये स्टाइल मैंने पंचमदास से
1: जी
0: सीखी।
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा रा, आप समझे?
1: वो खुद भी ऐसे ही गा देते
0: हाँ
1: हैं
0: बिल्कुल
1: जी।
0: डा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात एम चंद्रा की फिल्म
1: धर्म कर्म भी था,
0: धर्म
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल मुकेश अंकल के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे, फिर मैं गाती थी एक तो नाम, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती,
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो, तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हम माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
0: जी,
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है,
0: विधा है,
1: बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है, लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा

0: एक दिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा
1: माटी
0: माटी के
1: के
0: मोल,
1: मोल
0: ये
1: में।
0: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये
1: बिल्कुल
0: गाना
1: बिल्कुल, ये
0: बजाइएगा।
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर की मां
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी। मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूं, इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एके नडियाड वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैं मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम किया
0: जी,
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है और ताउम्र याद रहने वाली बात।
1: और ये आखिरी गीत, इतनी शक्ति हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी। कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर की जो शुरुआत हुई है, काफी जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
0: उनकी शुरुआती दौर में
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस यस,
0: आप हमारे लिए लकी हैं।
1: तो ये हमने सोचा ही नहीं
0: जी,
1: था
0: जी।
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
0: बिल्कुल,
1: गया।
0: बिल्कुल। और पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके साथ गाना आपको मिला।
1: बिल्कुल। और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी

0: आवाज,
1: वो वही थी
0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
1: जी, वो
0: थी,
1: पुष्पा जी की
0: है
1: ही
0: ना।
1: आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
1: जी मेरा ही
0: कीजिएगा
1: सवाल
0: जरूर,
1: है,
0: तब मैं आपको
1: जी
0: बताऊंगी
1: मेरा ही
0: कि
1: सवाल
0: क्या
1: है।
0: फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए।
0: बस वो गाना,
1: जी,
0: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले, पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं।
0: हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे
1: जी
0: बैंक में, सिर्फ
1: जी
0: आइएगा,
1: जी
0: तो हम सोचे, हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया।
1: जी
0: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की
0: जी
1: दुनिया में
0: जी
1: हम कई बार, जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या
0: जी
1: मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं,
0: जी
1: तो ये गाना नंबर वन पर होता है।
0: देखिए,
1: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को
0: है
1: हर
0: ना।
1: उद्घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने, जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, वो
1: हाँ, वो
0: पहचान, वो
1: स्थान।
0: स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं,
1: बिल्कुल,
0: जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चलें तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी,
1: बहुत
0: बाप रे,
1: बहुत बिल्कुल।
0: तो
1: तो चलिए
0: इतने
1: ये गीत हम सुनते
0: बिल
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

0: 베스트 마이티 나고야.
1: कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज होते हैं और कुछ मुकाबले किसी खेल की पहचान बन जाते हैं। आईची नागोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा। कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईची नागोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर। कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका, महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म। सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग में आया एक और पदक, आशी चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैच पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
2: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
1: निशाने लगाने के लिए

0: आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
1: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवे स्थान पर रही और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गई।
0: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
2: इट वॉज अ थ्री मेडल डे फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद टू सिल्वर्स एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वाज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 seconds। लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन गेम medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pahal missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paral Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing 4th in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished 6th. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing 2nd in a semi-final in 20.81 seconds, while Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day 1 on the top of the standings with 4,338 points after 5 events, keeping himself firmly in contention as the remaining 5 disciplines take place on Sunday.
0: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
3: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनीष सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
0: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
1: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग

0: ग्राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथी नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहोद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा, हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वैनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रही। तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दें कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
1: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
2: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने दो क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
1: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
3: A day of contrasting fortunes for India in the individual badminton competition at the Asian Games. Lakshya Sen's singles campaign came to an early end against former world champion Lokheen Yu. The Indian fought back after losing the opening game, but the Singaporean prevailed 21-12, 15-21, 21-14 in a contest that lasted over an hour. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshya, although he has already won a bronze from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7, 21-7 victory over Kazakhstan Maksud before being stretched by the experienced Chao Tin Chen. Ayush pushed the third seed to three games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda. After surviving a three-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching, Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
0: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लचुनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
3: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18-year-old अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच points down in the third, but the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning four consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of a young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Muhammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game, but even

0: जापान की मिवा हरिमोटो से हुआ। यशस्वनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया, लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्वनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मिवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल का राउंड ऑफ 32 में भारत के मानुष शाह के सामने चीन के लिन शिनडोंग की चुनौती थी। लिन शिनडोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुष शाह को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुष शाह भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही हैं एरिना का हाल।
2: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishtha, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट।
2: With 2 gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
1: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेंस शॉर्ट बोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना यूएई से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं, तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार, तमिला रासन, यहास पलाक्षा, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरें रहेंगे मुरली शिवशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता, भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, परवीन 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला

गुना 100 मीटर रिले के साथ, एक दिन इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे लय विन्यासम। कलाकार थे मृदंगम पर विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन। आपके साथ संगत कर रहे थे कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन, वायलिन पर धुन दे रहे थे तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुचिरापल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। In the National Program of Music featuring Laya Vinyasam, you just heard Mrudangam recital by Selam Shri K. Srinivasan. He was accompanied by Tenkasi Shri H. Paramasivam on the Kanjira, Andanallur Shri R. Ranganathan on the Ghatam. Violin refrain was by Tiruchi Dr. R. Govindarajan. The program was recorded in the studios of Akashvani Tiruchirappalli.
1: ये आकाशवाणी है। आज रात के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक लेट अस नाउ लिसन टू द तविल लय विन्यासम बाय श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया।
1: श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया आकाशवाणी हैदराबाद के ए ग्रेड तविल कलाकार हैं। उनकी संगीत यात्रा का प्रारंभ वर्ष 1990 में उनके प्रथम गुरु श्री वीएन लक्ष्मी नारायण के मार्गदर्शन में हुआ। बाद में उन्होंने श्री यल्लूरु श्री निवासलु तथा श्री तिरुकडेयूर टीजी बाबू से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त किया। वर्ष 2018 में उन्हें तेलंगाना राज्य के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2019 में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तविल वादन के लिए उन्हें डोलू कला सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्तमान में वे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादागिरी गुट्टा में डोलू कलाकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें डीडी यादगिरी पर प्रसारित नाद स्वरम कार्यक्रमों में तविल पर संगति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश भर में अनेक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपनी निरंतर साधना, समर्पण और गहन अनुभव के साथ श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया पारंपरिक भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ नाद स्वरम पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री लोडगु वासु।
2: श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद। हिज म्यूजिकल जर्नी बिगैन इन द ईयर 1990 under the guidance of his first guru Sri VN Lakshmi Narayanan. Later he received training and guidance from Sri Yellur Srinivasulu and Sri Tirukkadayur TG Babu. In the year 2018 he was honored with the Eminent Citizen Award of Telangana State, and in 2019 he was conferred the title of Dolu Kala Samrat for his tavil playing in the field of Carnatic classical music. Currently he is serving as a Dolu artist at the Lakshmi Narasimha Swami Temple in Yadadri. He has had the privilege of providing tavil accompaniment for the Nadaswaram programs broadcast on DD Yadagiri. He has participated in numerous music and cultural programs across the country. Through his continuous practice, dedication and profound experience, Sri V. Chinna Venkata Subbaiya remains constantly committed to preserving and promoting the rich cultural heritage of traditional Indian music. In tonight's program, the artist accompanying our Nadaswaram is Sri Lodugu Vasu.
1: Aaiye ab sunte hain Sri V. Chinna Venkat Subbaiya dwara Tavil Lay Vinyasam, jo Chaturashtra Jati Triput Tal mein nibadh hai.
2: Let us now listen to the Tavil Lay Vinyasam by Sri V. Chinna Venkat Subbaiya, set to Chaturashtra Jati Triputa Talam.

0: वेंकट सुब्बया के तविल लय विन्यासम का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नाद स्वरम पर आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे श्री लोडगु वासु। यह संगीत कार्यक्रम राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रसारित किया गया।
1: विद दैट वी कंक्लूड द तविल लय विन्यासम बाय श्री वी चनवेंकट सुब्बय्या in the broadcast of National Program of Music. He was supported on Nadaswaram by Sri Lodugu Vasu. This concert was recorded in the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and brought to you from the Delhi station of Akashwani.